दिल में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं। वह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। नाग पंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही फिर

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज में। और माई तू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए। यहाँ तो लीजिए, अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

अरे दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रूना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रूना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका, फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

0: चले
1: करते हैं प्यार समझ में आया
2: तकरार समझ में आया
1: चली हो कहा देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेटिव ए ने 50 रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेटिव द्रियन तख्त ए ने 50 से सीधे चलते हैं द्रियन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगतिन द्रीन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत, जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं। ये जी हाँ, ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आ है, आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

माई दू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

स्थानीय रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स अंत बदंगते सुलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, तो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डाउन सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी कि फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी पहले Van maandag tot vrijdag van 9 uur is morgens tot 5 uur middags op de volgende telefoonnummers kantoor 070-365-2247 of Studio Katarka nummer 070-362-2077. To job hier radio ka kaam hona, denk aan Fahun Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. राम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप है तो हम लोग है ना। बेंट यू नो खीन लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En recent hebben we ook nog onze eigen karaoke team. Dus blijf ons volgen via social media en ook via onze programma's. Zo, Abhyakar is chota aur mota sa jo Fahun Hindustani Radio ka parivar hai na, usme Abhyakar shamil ho jaye. सभी जानकारी 07-365-2047 पर आधार करें एंड फ्रांक द मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे टॉट फिल्म मैं तेरे लिए, जो रिलीज किया गया था 1988, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मीनाक्षी शेषरारा जी के साथ, और नूतन जी भी इसका फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार बप्पी लहरी के साथ है और सभी गाने लिखा है देवानंद का छोटा भाई श्री विजय आनंद जी ने। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने के उस फिल्म में से, तो हम एक अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं के नाम पे। जाने से लगते हो मैं तेरे लिए, बप्पी लहरी के साज पर और उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखा जाए तो बप्पी लहरी के सांच पर उन्हीं के आवाज में साथियों के साथ इंटरव्यू फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 वादा निभा दो मैं तेरे लिए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए, अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में और साज है बप्पी लहरी जी का।

दिलों को मिला दो और वादा भी निभा दो। फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 अति सुंदर बयान अमित कुमार और साथियों के आवाज में। अगला बयान आवाज दे तू कहाँ है मैं तो तेरे लिए, टाइटल सॉन्ग और एक बार फिर किशोर दा का सुपुत्र अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में, बप्पी लहरी के साज और विजय आनंद जी के अल्फाजे।

Ja, wat hey, beautiful song uit de film Meterilie 1988. Amit Kumar, Satyo Kea, Wanzumet, Isundrabian, Amsterdam, Insuna. Composed by Bappi Lahiri aur Alvazitha. Devanand ji ka chota bhai, Vijay Anand ji ka. अगला बयान मन के मंदिर में जलती रहे एक दिल को छू लेने वाला नगमा है एक फिल्म में तेरे लिए गजल स्टाइल है कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार द ग्रेट बप्पी लहरी और अल्फाजे है क्या अल्फाजे है विजय आनंद जी का गायक है महान गायक यार 80-90 श्री अनूप गोशाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप सुनिए

क्या बात है, रोटे खड़ा हो जाते हैं ऐसे ऐसे नगमे सुन सुनकर। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार गायक प्रोड्यूसर द ग्रेट बप्पी लहरी जी, और गाने वाला था महान गायक एक द यार 80-90 श्री अनूप घोषाल जी। तो साथियों, सभी नगमे फिल्म मैंने तेरे लिए का 1988 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1989 में, और इस फिल्म में देवानंद साहब जी ने काम किया था महान अभिनेता भैया भरत द ग्रेट मनोज कुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न श्री रेखा जी के साथ, और महान अभिनेता शशि कपूर जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार है उत्तम जगदीश जी, और गाने वाले तो एक से एक आप सुनते रहेंगे। और पहला नगमा उस फिल्म में से लेकर आ रहे हैं आप सभी के सेवा में पद्मश्री महेंद्र कपूर जी और उत्तम जगदीश जी, क्या संगीत दिया है इस फिल्म में। मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर टाइटल सॉन्ग, मैं एक क्लर्क हूँ।

दिल को छू लेने वाला नगमा, कुछ आंसू भी निकल आते हैं इसी से नगमे सुन सुन के ना। फ्रॉम द मूवी मैं एक क्लर्क हूँ, मनोज कुमार पे फिल्माया गया है अति सुंदर बयान, महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीतकार उत्तम जगदीश के साज, फिल्म क्लर्क टाइटल सॉन्ग।

तो साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि वो किसको और चाहने की सोच भी ना सके।

0: आती है। और सितम का मतलब है अंडरड्रकिंग, दिस सताना। अगला शेर जो लिखा है यारो, चलेंगे तेरे साथ तेरा साया बनकर, छोड़ ना देना बीच राह पराया समझकर। ये सब दो लाइन शेर शायरी है, यही तो खूबी है ना, इतनी कम शब्दों में लोग कुछ ना कुछ बता देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। सोचती हूँ कि मैं कुछ और भी सोचो, सोचती हूँ कि मैं कुछ और भी सोचूं, मगर टूट जाते हैं ख्यालात तेरी याद के बाद। किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, हमें तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा तू मेरी सांसों में, दिल में, ख्यालों में, धड़कन में, रूह में, नस नस में, ये मैंने कहा, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं यारो। शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, मेरा तो यकीन ही तुम हो तो शिकायत कैसी। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक और ही सुंदर बयान, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी। रख गीता पे हाथ क्या बात है, महान म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना ने मिलके इस सुंदर बयान को सजाया है।
1: और बेल आइकन को प्रेस करें

रखा गीता पे हाथ, क्या बात है। अति सुंदर बयान एड फिल्म क्लर्क 1989, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना। तो हमारे साथियों, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नतीजतन बलाइस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत दम कार्यक्रम में। आना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो सो लोबी लोबी नांगा ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, इश्तिहारे हो, जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं, किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलेटेडेंस कंटोर यूर फन मांडाग तोत फ्रेडाग फन नीग यूर स्मार्फंस तोत फेव यूर स्मिडाग्स दफ्तर कतार का नंबर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में। बेंतिनो के लिए फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 970-365-2247 पर आप तार करें। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ यारो। बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक, जो रिलीज किया गया था 1964। ब्यूटी क्वीन विजयंती माला जी के साथ राज कपूर जी ने, यानी हाँ राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं, तो मिलकर काम किए हैं इस फिल्म में। संगीतकार है शंकर जय किशन। तो दो नगमे रह गया था सुनाने का इस फिल्म से, तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मज़ेदार सॉन्ग जो लोगों को उस ज़माने में काफ़ी पसंद लगते थे, कुछ को नहीं कुछ को ज़्यादा। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान। मिल के सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम।
1: मैं बुढ़ा

Beautiful song, mazedaar song from the movie Sangam, 1964. Composed by Shankar Jai Kishan aur sunai aap sabhi ko Bharat Ratna, Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji. Ek aakhri bayan aap sunenge from the movie Sangam. Beautiful song, Ich liebe dich, I love you. Us zamane ka mashhoor gaane wala Vivian Lobo ke beautiful आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे. लिखा है ये अति सुंदर बयान को शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी ने मिलकर और कंपोज किया है शंकर जय किशन.

फिर क्या करें?

Ich liebe die, I love you. From the movie Sangam 1964, Vivian Loboke, Beautiful Awazmi, composed by Shankar Jai Kishan. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फ्रॉम द मूवी संगम आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1964 में, फिल्म जिंदगी। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजयंती माला जी के साथ, और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी, महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन। तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे। अगला बयान शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को। पहले मिली थी सपनों में, हसरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में, संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर।

Beautiful song, wonderful song, Shrutawani, suna ai de film Zindagi, Ravi Sahab ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एड फिल्म जिंदगी हम प्यार का सौदा करते हैं.

थे दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी। एड फिल्म जिंदगी नीति फिल्म सिस्टर सुर का बादशाह रफी साहब जी। तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यारो कि जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे। मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है, जिनको जब दिल चाहे जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं। माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं, माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं, लेकिन जब हम जैसे हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

हम दिल की कमल देंगे, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। अति सुंदर बयान, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जय किशन और लिखा है हसरत जयपुरी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग है घुंघरुआ मोरा छम छम बाजे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। प्यार की दुल्हन सदा सुहागन, एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए। मिलके सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन।

हूँ प्रोग्राम में, पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी, और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आई फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन के सांच पर। छूने ना दूंगी मैं, दोनों बहने क्या बात है, लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं शंकर जय किशन के साथ पर जिंदगी द मूवीज द मूवी।

0: देवी। शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो।
1: गोपाल, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें, और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

ये रो बेटा, अपना बेबी को अपने हाथ से पैदा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने न दूंगी मैं आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये थी सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की एड फिल्म जिंदगी शंकर जयकिशन की सांच पर। एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

0: आप जब सुनते हैं तो हम लोग भी और जोर तोर से कोशिश करते हैं कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट कर करके आप सभी को सुनाने के लिए। तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ, स्टे ट्यून ऑन। आप ही का तो ये आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है। आफ्टर द ब्रेक।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
2: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में।

दोस्तों, रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी यानी परसोलक है बिखर जाए। और जिनकी कदर नहीं है, जब कोई आपका कदर नहीं करे तो उनसे दूर ही रहो, ये बेहतर है मित्रों, बहुत बेहतर रहेगा। और कुछ रिश्ते केवल सीख देने के आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और साथ निभाने नहीं। और जो बार बार तुम्हें चोट दें, उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है मित्रों, साथ रहने से बेहतर है दोस्तों कि उसे मुक्त कर देना। और कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। और इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ मित्रों, खुद को आत्मा इतना निर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे, तुम्हारी गति ना रुके, तुम्हारी गति ना रुके मित्रों। इस तरह से अपने को निर्भर बनाओ।

0: मित्रों, कहे जाते हैं कि जीवन में सफलता केवल ध्यान करना हम क्या बतला रहे हैं कि जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने यानी इच्छा करने से, इच्छाएं रखने से कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है मित्रों। और जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है मित्रों, वही इतिहास रचता है। और माता पिता का संघर्ष, भाई बहनों ध्यान करना हम आपसे क्या बतला रहे हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बतला रहे हैं कि आप इसे याद करें, अपने जीवन में उतारें, तभी आपका बाकी जीवन सफल हो पाएंगे, अन्यथा पता नहीं मित्रों। तो माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग, दोस्तों हम उनकी त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां, जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती है। मतलब खेन बतीकने अब जीवन में नहीं रहते, कुछ भी नहीं, सब खलास हो जाए मित्रों। ध्यान करते रहना,
1: जब हमारे पास बुढ़ापा आने लगता है तो इस भजन के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होने लगता है। जब ये सब आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लेना कि बुढ़ापा

0: मेरे प्यारे साथियों, हर दर्द ध्यान करना, हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जब आप सोच रहे हो कि मैं बेकार हूँ, शक्तिहीन हूँ, एक मैं नीच, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। अभी तक तुम में और शक्ति है, और जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा, सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे, जो सीख तुम मेहनत से लोगे मित्रों, वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी, हमेशा चलेगी। आपके ज्ञान हमेशा चलेगी, ज्ञान कोई छीन नहीं पाएगा आपके मित्रों। और कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, कुछ चीज को ना जिंदगी भर लेकर चलते रहो, चिंता करते रहो, बीमार हो जाओगे। छोड़ना सीखो हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता है, हर रिश्ता अमर नहीं होता है। कुछ बस अध्याय मित्रों, कुछ बस अध्याय होता है, थोड़े दिन के लिए जीवन में होते हैं, छुट्टा छुट्टी वगैरह वगैरह ये सब पता नहीं है, मगर कभी कर्म के अनुसार होता है ना। तो और कुछ केवल एक सबक है जो कुछ मिले आपके जीवन में मेहनत से, या किसी ने आपको कुछ बुराई कर दी है उससे जो सीख मिले है, वो एक सबक है, वो एक लेसन है मित्रों। दर्द उसे नहीं, डर नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, ताकी करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं, उन लोगों से डरना चाहिए जो तुम्हारे लिए एगो फालसेती करे है, ऐसे लोग से डरना चाहिए मित्रों। और तुलना करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो, मतलब ओके ऐसे है तो हम के हो चाहिए, ओके मर्सिडीज भैंस हैं तो हम के मर्सिडीज भैंस चाहिए, ओके बीएमडब्ल्यू, ये सब बतियाँ छोड़, मेहनत करते रहो और जो मिले जीवन में उससे सुखी रहो, उसी में संतोष करना। तो तुलना करना छोड़ दो मित्रों, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो भाई बहनों, उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, उसे तोड़ दो है? तब आप उड़ना सीखोगे, तब आप फ्रे है पाओगे मित्रों।
1: पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना।

मित्रों, जो बात हम आपसे बतला रहे हैं और बतलाते हैं, इसे वैसा ही हवा में उड़ा देना नहीं है। जीवन में उतारो, अपने माता पिता का आशीर्वाद ही। ध्यान करना इस पे हम क्या बोल रहे हैं। अगर माई बाप नहीं है तो फोटो है ना, खड़ा होके उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो भी। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मित्रों जीवन की असली पूंजी है। जीवन की असली पूंजी है। माँ के चरणों में, ध्यान करना, यमुनी डैंक सैनिक स्मरणी, उनका आशीर्वाद पावर उतने ही हैं। तो माँ के चरणों में वही शक्ति है, वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। मित्रों, जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। विश्वास करो तो गंगा मैया है और ना विश्वास करो तो गोत्रों के पानी है। मित्रों, खुश रहना, ध्यान करो, खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं है, यह एक कौशल है। यह कला उससे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी मित्रों, कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं है। तो जो कोई आपके बात ना सुने, समझाओ बतलाओ ना सुने, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, अपन कर्म जाने, वो देखे का करे सके है। मित्रों, इसीलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारे मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। जहां तुम चुप रहो वहां भर लोग समझ जाए कि करे आगे ना बतियाई, तो कुछ ना बोले थे, आंतु और ना ही देवत है। मित्रों, तो दोस्तों, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और उसे मुस्कुरा कर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। मित्रों, और ये ना सोचना कि हम डरपोक है या दूसर कोई सोचे कि तू डरपोक है, नहीं, सो हाथ है निर्मित बस्त में से। और जो हम बतला रहे ना, ध्यान करके सुनते रहना, ध्यान करके सुनते रहना।

मित्रों, जो अंदर टूट कर भी ध्यान करिए, जो अंदर टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा है। हाँ, वही सबसे मजबूत योद्धा है, इंसान है। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मा बल के आगे झुक जाए। झुक जाए मित्रों, क्योंकि आप में वो शक्ति है। और जब मनुष्य अपने आप की पहचानने की भूल कर बैठता है भाई बहनों, तब वो अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है, हट जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, जैसे आपके साथ होवत है। हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते आपके साथ, तो आप सही रास्ता पे हो, चलते रहे ना मित्रों। क्योंकि ध्यान करिए, क्योंकि वो स्वयं के आत्मा बल को भूल कर दूसरों की सोच धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को खो बैठता है। और जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है, तुम्हारे अंदर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है मित्रों, आपके मन ही सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। शत्रु भी, तो दुश्मन बाहर ना खोजो, दुश्मन तुम्हारी कर्म से है, जैसा कर्म करियो वैसा ही मिले। प्रेम प्यार से रहिए तो प्रेम और प्यार मिलेंगे, और बिगी मांग खेलियो तो तुम्हारे सामने और बिगी मांग आ जाइए, तो टकराव हो ही, सुखी नहीं हो पाओगे मित्रों, सुखी नहीं हो पाओगे। इन सब बातों पे ध्यान रखते रहना मित्रों, हम सुमर बात नहीं बोलत हैं।

मित्रों, मैंने आपको भी बतलाया था कि मन ही आपका जो शत्रु है वही भी है। सबसे बड़ा शत्रु भी आपके मन ही है, मगर वो आपके हाथ में है। और यदि उसे मित्रों, यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए मन को, तो यही मन तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। धन है पी मन तीख यौ व्यस्त में धन है पी अन प्रॉब्लम। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो, अपने खोपड़िया को ठीक करो। पहले अपने चित्त को स्थिर करो मित्रों। दूसरों के कर्म और विचार क्या है ध्यान करना, दूसरों के कर्म और विचार क्या है इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका अपरिणाम तय करेगा, उनका अपरिणाम तय करेगा मित्रों। लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से ही बनेगा। तुम खुद अपने भविष्य का रचयिता हो और ना कोई दूसर कोई मित्रों। और यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से इस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास करो हम क्या बोल रहे हैं मित्रों। ये सब बेकार की बात नहीं है, सोचनीय बात है।

मित्रों, आप देखिए कि कितनी उम्र के हैं आप, और फिर भी आप सोच रहे हैं सुधरने की बात कि हम अपने जीवन में और बेहतर करेंगे। और बेहतर क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ ज्ञान से ही जीवन को सुधार आ सकती है मित्रों। तो इसीलिए आपको हम इस रूप में, इस तरीका से ज्ञान प्रदान करते हैं। इच्छा हो तो ले लेना, अगर ना इच्छा हो तो चलते रहना। जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उससे चलते रहो, देखो कहाँ पहुँचते हैं। कितने लोग तो चले गए, कहाँ गए पता ना है, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहां तक ये आवाज पहुंचे, जहां तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुंचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एफर्गिन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इस रास्ते के जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जाई किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं।

0: जहाँ दोस्तों बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो यह शस्त्र का जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।
1: लाख

जय दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म है मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं। और हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्तां 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेटिव का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नायतु मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करी तो इस शस्त्र का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई हंटिंग ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी में आप लोग के लिए चलते नई हंटिंग वेफन शस्तक में। जौहर महमूद इनकोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी हाँ दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, सुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। 1935 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं 1935 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम क्या है इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा ने कितने फैंस शस्तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखेंगे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

0: न कोई रहा है ना कोई रहेगा जोहर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैन सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के जरूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार आपको राम राम नमस्कार।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07736 2047 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietpartij op een middelbare school in Sambuanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen 1 maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.
0: Ja, dosto, sabse pehle hum sabhi ko ram ram karte hi namaskar adayab aur satyakal ho. Main hu aapke khidmat mein Anil Sarju jo aaj ka program hum aap log ke karte hain kuch भजन कार्यक्रम हम आप लोग के करेंगे दोस्तों और सभी को हमारा राम राम जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचे हमारा प्यार भरा दुलार पहुँचे नमस्कार पहुँचे अदा पहुँचे हर एक को हमारा दुआ पहुँचे सलाम पहुँचे और राम राम नमस्कार पूरा टीम की तरफ से द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हर एक को राम राम नमस्कार। आज देखा जाए तो भजन का प्रोग्राम है, हम कुछ भजन प्रोग्राम करेंगे। आधा घंटा मैं लेट हूँ और हम भजन करेंगे। एक घंटा का प्रोग्राम है भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप लोग के सुनाने वाले हैं और हर एक को एक बार फिर से हमारा नमस्कार हो। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूँ। जो लोग इस वक्त अपने नौकरी पे जा रहे हैं अपने काम करने के लिए, हर एक को बचा के जाना चाहिए, संभल के जाना चाहिए। जिस घर में दुख है वहाँ पे हम शामिल है, जहाँ सुख है वहाँ भी हम शामिल है, यही हम आप लोग के कह सकते हैं। और हम प्रोग्राम को चलाएंगे कुछ भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप मिल के सुनते हैं। शिव मंत्र

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर एक के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। बोल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुनी है, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हम चलते ही ओम जय शिवा ओमकार।

फोरम है और हम आप लोग के मिल के सुनेंगे कुछ शिवा के भजन है और कुछ अभी हम गणेश के एक दो भजन चलाएंगे। चलो हम सब मिल के कुछ भजन करते हैं, जो भी अपना पूजा पे है या अपना फूल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए इस भजन है।

ओम हर हर हर ओम महादेव। क्या इसमें क्या ताकत है, भगवान में क्या ताकत है, मैं ये मांगना चाहता हूँ भगवान अपना पूरा टीम की तरफ से, फागुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हर एक घर का दुख दुख करना, हर एक घर की जो बीमारी है दुख करना, ये दुनिया में जो हो रहा है उसे बचा के रखना मालिक, हर एक के दुख दूर करना, तंदुरुस्ती दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे के लोग अपना चीज कर सकते हैं और हर एक बीमारी से बचाइए भगवान। जो भी कुछ करना चाहता है हर एक चीज पूरा कीजिए, आप ही है, आप तो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के रखवाला आप ही है, शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही लोग है जो इस दुनिया के चला रहे रचा रहे हैं, जैसे चाहते हैं वैसे आप रचा रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं और हर एक के घर घर के जो प्रॉब्लम है उसे दुख करना सोल्व करना मालिक आप ही है, यही मांगता हूँ। हर एक बीमारी से बचाइए। हम आप लोग के लिए चलते हैं गणेश के मंत्रा है, विष्णु का मंत्रा है, लक्ष्मी का मंत्रा है, देखा जाए शिव मंत्रा है, दुर्गा मंत्रा है, हनुमान का मंत्रा है, यही सब है जो दुनिया में दुनिया चलाते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं है, इन सबसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यही है जो दुनिया चला रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मालिक आपसे हर एक को बचा के रखना, संभाल के रखना, इंसान की जिंदगी बहुत गिनती है मालिक, बचा के रखना, हर एक बीमारी से बचा के रखना।

जी हाँ दोस्तों, ये था गणेश का मंत्र। हम सब अंदाज नहीं लगा सकते ही कि इसमें कितना ताकत है। बहुत ही ताकत है, बहुत ही ताकत है। ये मंत्र को हर एक को जानना चाहिए। हमारा हिंदू भाइयों जो है इसे जानना चाहिए। इसमें वो ताकत है जो हम कहीं नहीं सकते हैं। चलो दोस्तों, हमें चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

जहाँ दोस्तों दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया हरि ओम शरण की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आप लोग के लिए चलते विष्णु मंत्र से, इसमें क्या ताकत है हम सब मिलकर सुनते हैं। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू।

सच बात है तेरा लीला हमेशा न्यारी रहेगी। ये था ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे आपने सुना इस भजन को, जो सुन रहा है वो समझ भी रहा है, यही सब है जो दुनिया चलाने वाला है। दुनिया हम नहीं चलाते हैं, दुनिया ये लोग चलाते हैं, और इससे बड़ा और कोई नहीं है। हमें मानना चाहिए कि यही है दुनिया के रखवाले। हम सदा अपने हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़ते इस दुनिया को संभाल के रखना भगवान, यही मांग है मेरा। चलो हम आगे चलते हैं। हरिओम शरण की आवाज़।

प्यारे सुनने वाले भी आप सुन रहे थे हरिओम चरण की आवाज। दिन भर में एक बार भगवान का नाम लीजिए, लीजिए भाई हमारा हिंदू भाई और बहनों, एक बार लेना चाहिए, 10 बार नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर आप अपना दिन में अपन दिन एक बार ले लेना तो भी भगवान आपको सुनेगा, इस वक्त वही काम आएगा, भगवान काम आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, भजन के प्रोग्राम देखा जाए तो एक दो गाने के बाद यहाँ से भजन के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम अपना हिले मिले जुले गीत आप लोग के जरूर सुनाऊंगा। मैं हूँ अनिल सरजू प्रोग्राम में, और आपको हम ज़रूर ले चलेंगे

और भड़ागीत ब्रोकन हर सॉन्ग के प्रोग्राम में तुम अगर मुस्कुराना चाहो, तुम अगर मुस्कुराना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, माइटी मुकेश की आवाज़ में।

किसी के प्यार में, किसी के प्यार में एक गहरी चोट खाई है, किसी के प्यार में एक गहरी चोट खाई है, वफा से पहले बेवफा पाई है। लोग तो दुआ मांगते हैं इस हाल में मरने की, मगर हमने उसी के यादों में जीने की कसम खाई है।

खड़े गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राजन के साथ, वो भी फाहन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए। अब की बार ना अपना था, ना अपना था जो कल गुजरा,

छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे, भुला के गम सारे, दिल से जियो। अपने के लिए नहीं सही, अपने के लिए नहीं सही, तो अपनों के लिए जियो।

हजारों का सफर में आज थोड़ा सा बातचीत होगा। मजरू सुल्तान पूरी एक स्क्राइफर, एक लिखत है गीतों का, और था यह दोस्तों, और इन दिनों में दुनिया नहीं है, लेकिन मजरू सुल्तान पूरी असली नाम असरूर उल हसन खान, पैदा हुआ इन अक्टूबर नीखंटिंग में। और इनका पिता वो अंग्रेजी किस्म पे मजरू सुल्तानपुरी का पिता एक सिपाही था और एक स्ट्रेंग मुस्लिम। वो सोचा था मजरू को एक दूसरा रास्ते पर ले जाने के, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी का ख्वाहिश था गीत लिखने को, गज़ल लिखने को वगैरह वगैरह। तो इंडिया का, भारत का जितना बॉलीवुड का जितना फिल्म म्यूजिक कामते है, जितना म्यूजिक डायरेक्टर है, लगभग सभी के साथ ये गीत पेश किया है दोस्तों। और मजरू सुल्तानपुरी को अब्दुल रसीद, एक फिल्म डायरेक्टर, देखा मुसादा बदली के साथ। मुसादा बदली एक शायर था और इसका शायरी जो था तो वो सुल्तानपुरी ने लिखते थे, मजरू ने लिखते थे हमेशा। तो इनका शायरी जब सुना तो इसे कहा चलो फिल्म इंडस्ट्री में और वहाँ पर गीत लिखो। तो ये नहीं चाहते थे, फिर भी मुसादा बदली ने बातचीत किया और इन्हें ले गया नौशाद के पास। नौशाद बातचीत किया मजरू सुल्तानपुरी से और नौशाद ने कहा अच्छा मैं एक फिल्म से शुरुआत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक गीत लिखे बादल आए झूम से इस तरह से। तो मजरू सुल्तानपुरी दो रोज के अंदर गीत लिख के और पेश किया नौशाद के साथ। नौशाद बहुत खुश हुआ, तभी से वो कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत से गीत लिखा दोस्तों। 50 साल वो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लगभग 300 गीतों उन्हें लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी दोस्तों इस दुनिया में, लेकिन उस जिस तरह से वो गीत लिखा है उर्दू भाषा, वही लाया है बॉलीवुड या फिल्म इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री में। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है फिर फिल्म यारों की बारात में एक गीत, चुरा लिया है तूने जो दिल को, हम सब मिलकर गीत को सुनेंगे।

मजरु सुल्तानपुरी। दोस्तों जब एक गीत पेश होता है तो जो गायक होता है राफ़ी हुआ या मुकेश हुआ या किशोर हुआ तो लोग कहते कितने अच्छी तरह से गीत पेश किया, वाह हुआ कहते, लेकिन जो जो कोई ये गीत लिखता है उसका बात उसका नाम लोग कभी नहीं लेता है। निशिकांत जो होता है म्यूजिक डायरेक्टर, ओ पी नैयर भाई, सोनी कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह वगैरह, उसका नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं उसका नाम कभी नहीं लोग लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजरू सुल्तान पूरी, मजरू सुल्तान पूरी को दो अवार्ड भी मिला। एक अवार्ड मिला फिल्म दोस्ती में चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे गीत पर, और साथ ही साथ नींद तक में दादा साहेब पल के अवार्ड मजरू सुल्तान पूरी को मिला। एक लड़की भीगी भागी से फिल्म चलती के नाम गाड़ी नहीं थी आख्तन फैज तक में, जब किशोर कुमार ने फिल्म को लिखा और तीनों भाई ये फिल्म में काम किया, अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार। इस फिल्म का गीत जितने थे सब किशोर कुमार ने गाया, लेकिन जितना गीत लिखा गया ये सभी ने मजरू सुल्तान पूरी ने लिखा। एक लड़की भीगी भागी से सुनेंगे।

मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी ने एक किताब लिखा और एक किताब से उन दिनों का प्रेमी जो था इंडिया का नेहरू जी, तो नेहरू जी ये किताब से खुश नहीं था और मजरू सुल्तानपुरी से कहा आपको माफ़ी मांगा चाहिए। लेकिन मजरू ने काम नहीं किया, माफ़ी नहीं चाहा, माफ़ी नहीं मांगा तो उन्हें जेल पे भेज गया गया दोस्तों। और साथ ही साथ मजरू सुल्तानपुर एक कम्युनिस्ट था और जहाँ वो रहा था आसपास के आदमी उन्हें नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो कम्युनिस्ट था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था। तो जब ये जेल गया, जब खफांग गया, जब लौट के आया, उन बीच में उनका जो घर पर नौकर था वो घर का जितना सामान रहा लेकर चला गया सभी सामान लेकर चला गया। और जब घर पर गया तो घर में कुछ नहीं था और आसपास के लोग जो थे उन्हें गुस्सा में ताकते थे। तो मजरू सुल्तानपुरी ने घर छोड़कर चला गया और गया एक स्टूडियो में, एक स्टूडियो जो रंजीत स्टूडियो था, तो वहाँ जाके बैठा था और सोचा था मैं क्या करूँ। उसी जगह पर नरगिस का माँ बैठा था, तो नरगिस का माँ उन्हें चीन लिया और कहा कि भाई सुल्तानपुरी आपका क्या हुआ, आपका क्यों इस तरह से दिखाते हो। तो उन्हें कहा कि मैं जेल से आया हूँ और लोग मुझे नहीं पसंद करता है वगैरह वगैरह। तो नरगिस के माँ उन्हें अपन घर पर ले गया और 8 महीना तक वो नरगिस के घर पर रहा, मजरू सुल्तानपुरी दोस्तों। और मजरू सुल्तानपुरी ने भी अवार्ड छोड़ के दोस्तों, जैसे मैंने कहा 50 साल के अंदर ये गीत लिखा, 50 साल गीत लिखा और लगभग 300 गीतों इन्हें तैयार किया। फिल्म धर्मक्रम में मुकेश के लिए ये गीत लिखा।

मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों दुख की बात यह है कि मजरू सुल्तानपुरी का मृत्यु हो गया 80 साल के उम्र में, और वो भी फिरंत दिख में आई यार त्वे दर्शन में। सितारों का सफर यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं वादा नहीं करता, सोचता हूँ आने वाला हफ्ता सितारों का सफर में एक दूसरा लिखत, एक दूसरा श्रेफ के बारे में बातचीत करने को।

मोहन हिंदुस्तानी रूपर आज चून है और यहाँ से आरम्भ होता है क्या हुआ तेरे और दर भड़े गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे, वो भी प्यार करे किसी और से।

बचपन, जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

या हो तेरे वादा दरबर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे वाला दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन हिंसा रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक 3 5 2 8 2 8 4 सीफ आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका केकेई के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नति मिस्टर केके पैदा हुआ दीरेंद्रनाथ ऑक्सिस '68 इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ऑर्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ लगभग 3500 गाना केके ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था निकटक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना, उसके चेहरे पर मत आना, उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे क्योंकि म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज़ के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथफतेंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स कीकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीहरी नीहे नीहे तक में कीकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरप तरप पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें कीकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे कीकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

1996 में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाए सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तनहा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला। सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी के एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

आपका सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जानते हैं नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यारह फैफन शैस्तक सेशन शैस्तक सीफन शैस्तक आख्तन शैस्तक तो निगरी सीफन तक जब लेकर रेस खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है

की एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पाव न्यूज चैनल पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। अर्जुन कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

माँ सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज़ उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज़, तो वो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

राजेंद्र कुमार के आवाज का या राजेंद्र कुमार का दिल के बात अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बात पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज। मुमताज का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूल था प्यारी सी फूल था वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतन शास्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शमी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शमी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शमी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शमी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारे नाम। इस वक्त हम स्टूडियो में आ गया है। अभी आप लोगों ने सुना है कुलेखा साथी राजन द्वारका से। दोस्तों ओवर पार मिनटन है वो ओवरलाइजेंस बरेख एंड ना द ओवरलाइजेंस बरेख के बाद में अभी हम आप लोग को देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। आज है मंगलवार है 8 अगस्त से घड़ी की ओर देखा जाए तो 7:20 हो चुका है और यहाँ से ओवरलाइजेंस ब्रेक के बारे में बाद में तो हम ऑफर लेंगे। दोस्तों शाम को आएंगे और वो है बीबी साहिबा रहीम बख्श, मेरे ख्याल से वो आ जाएंगे 1 बजे और 6 बजे अभी हम आपको जो अभी न्यूज़ को हम पढ़ेंगे उसको हम हैर हाल करेंगे। दोस्तों तो ये बातचीत है तो हम आपको बताते हैं अभी 1-2 मिनट के बाद में हम मौके समाचार आप लोग के लिए यहाँ पर सुनाएंगे चलाएंगे। उसके बाद में तो हम अपना जोंग न्यूज़ सुनाएंगे।

देता वही लेता, उसी का है संसार। एक आता एक जाता, ये जग का है व्यवहार। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है। ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए, परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp और Zeeland से परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन 85 दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुक तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानी दर्त केंद्रन, आजा नाना पर नाना, मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुक से बहन, हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरज मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत और सुबेरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कौंदराज सिंबुदत्त सरज मिश्र का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलेखन के निवासी था और वेलखलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं हेल्सेवस लंत में नंसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। हम दोहराते हैं हेल्सेवस लंत नंसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 5:45 बजे तक 7:15 तत्कवर्थ फोर्सेस, और अगले दिन 9:15 अगस्तस को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओफर सेफ तक हम दोहरा रहे हैं। देखने का अवसर है 18 अगस्तस 7:15 तक 7:45 यानी 5 से 5:45 तक, और वोंसदाग 19 अगस्तस को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओफर सेफ तक। आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्तस शाम 2 बजे नंसन बान कंत वे के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-23-42-31। खबर को हम दोहरा रहे हैं। दनहाग तेखनन लिम्बेरुक लेदरदोरप सेलंत से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं के दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफ्फा ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुक तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, और 30 लड़कों का आजा पर आजा नाना पर नाना, मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा के छोटकू, आनी इंद्रावती सरज मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता,
सेलांत के निवासी और सुबुरुख के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराज सिंह दत्त का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त क्वार्टर फॉर फाइव को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेलखलीकन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश में दिनसदाग 18 अगस्त के 17 uur तक क्वार्ट फोर सेस और वोजदाग 19 अगस्त को 6:30 से क्वार्ट ओवर 7 तक। डाकरिया आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त को 14 uur यानी शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश सेलंत में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622412131।

0: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: सेलंत हुस ओ सुबेरख से परिवार सरजुमिसर, परिवार सरजुमिसर बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर फाइव शाम को 85 साल की उम्र में यानी इंदलीफ सईद फन फैफ तख्त यार, दो बेटियां शकुंतला और शर्मिला सरजुमिसर के पिता, दो दामाद राज या राजन रौप कुंदन पांडे और हेमंत रघुनाथ का ससुर, चार बेटा शोर्स बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता, 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर, तीन बहुएं यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर, पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति, स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता, श्रीलंत ओ सुबुरख के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम वेलखलीखन के निवासी था और वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेत सेव सलोंद ननसन बान कंत वेख्तवी खुस में दिनसदाह 18 अगस्त को 17 ईयर से क्वार्थ फोर सेस तक और 19 अगस्त को हालफ सेफ से क्वार्थ ऊफर सेफ तक। डाकरिया दोंदरदाह 20 अगस्त 14 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वेख्तवी खुस सेलोंद में। खबर को हम दोहरा रहे हैं, सेलंत हुस ओ सुबर से समस्त परिवार सरजुमिसर कुंदन पांडे रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडे 14 अगस्त को क्वार्टर फोर फेफ शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तेज फन फेफ तख्त यार, दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता, दो दामाद राजन या राज रौप कुंदन पांडे और हेमंत रघुनाथ का ससुर, चार बेटे शोर्स या बॉय को भी कह सकते हैं अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता, 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर, गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर, पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति, स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबुर के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराद सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम में वेलखलीखन के निवासी था और साथ ही साथ वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवी खुस में दिनसदाह 18 अगस्त को 17 यूर तौर क्वार्ट फोर सेस और वनसदाह को 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक। डाकरिया दोंदरदाह 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवी खुस सेलंत में डाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 24 24। 12 31.

पाकिस्तानी रेडियो, सभी परिवार सरजू मिसिर, सभी परिवार रघुनाथ, कुंदन पांडे, तुलसी, श्यामलाल, सरजू मिसिर और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पावन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर रहा है। दीर्घ से ली दी सभी सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को। यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। ये मृत्यु समाचार आए

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब, शास्त्रीय काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आज ही देश का मंगलवार 8 अगस्त हो चुका है, क्वार्ट फोर ट्वेल्व हो चुका है। अभी यहाँ से हम अपना देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। दोस्तों अभी आप लोगों फल इस ब्रेक को सुना है, यहाँ से देश और विदेश के समाचार हम लाइव सुनाते हैं। शाम को 5:30 बजे मौत के समाचार को हम हराल करेंगे और 6 बजे जो न्यूज अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसको भी हम हराल करेंगे।

दोस्तों, हम तुरंत चलते हैं। और कहां चलते हैं? हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापे की ओर। फेहापे की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापे की बस्ती जो है हमारी जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापे का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापे ओवरवेगन indien zij vanuit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen. Bolle op bereid hij voorzitterschap leweke. Bolle jeb oké VHP ke kandidaat. Bolle stem kari top 1 op stem hoiga. Kike voorzitter mani VHP ke. Bolle belangrijk hoiga. कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एंड बरूप दून बोले जालिक एंड ओवरवेकन दंत सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंडे यार आने वाला साल में मई में फेहापे के बस्तूर फॉर किसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फुर्सतर तुलन जानो है चांस तो की उसका दी वॉज प्लोसिंग ऊपर लेने में से। और बताई गई है जहाँ पे हम लोग के फोर सीटर्स का वार्निंग तैयक ग्लेन उलर्स आन ते वेजन आज फोर सीटर। और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापे एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सबन किस करेगा। और बोले हैगा फेहापे बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा बोले आज वेर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन। Hoofdverstuur betalen VHP ke, ki bole 76 jaar VHP ke bestand hai. Aw bole VHP bole doormaak in de samenleving bole narm garam ooch neej bole sab hum log mee maak kar chukli baati. Aw bole VHP uiteindelijk go sterker terugkom bole phir se terug aaye. Ekar bare mein onder voorzitter joon hai VHP ke Ashish Kumar Gayadin. वो बोले हैगा बिनंद पड़ते सैन दी बे हम आंद्रिंगन कि बोले हम भी फोर सीटर्स का बोले कि कैंडिडेट इंस्टॉल कर कोई बोले तनसे ये सब कोई हमें किस करी तब वार्डोर है बेसिक इज अ गुड टीम टू सुकन फॉर दैट हेड इवेंटुअल सो अ स्टॉप सेट। और होफ वर्स्टियर्स के लेते महेंद्र गया दीन उस सफा बोले है बोले हम यईस मांगेला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले आउस अनखस्किक्त कैंडिडेट बोले हुए पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओफर खुद से ही kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de voorzitterschap mee mee hoe ik aan verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. Aur ibaat bole hai Mathura bole hai Uttaradin se bole hum baati. To ye baanchi the VHP ke ontwikkeling ke bare mein aap log ko hum boli थोड़ा से बताई दे भैया। सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है, सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल। और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है, एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया। ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है, पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा वही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया। सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस ट्यू द खवान एंड फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बॉक्सिंग भैल है
और बतावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एको सेफ सिटी कैमरा मस्त है अंतोन द्रख्तर वे बोनी स्ट्रात में वही मेरे को 48 यार के आदमी जाए के बिको स्ट्रात से निकल सेंट्रम से जाए के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेश खोजे के ना है वत हुआ पे सब लिखल है टॉप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से रखा अरे इनिंग भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सिरना में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बॉप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना दिसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोली से रखें सिमोन के बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश्व फॉर द रेस्ट बोले उस सब देशों हमें कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक को चीट न फरांद नौलिक्स बोले हम लोग अपर पटमोनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है डाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ऑन्तविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खांग जोन हम लोग के सलार से दुकान में जोन प्राइस से बस्तांद सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम यूज दा सीट है फॉलोअर्स एगन सेगन बोले geen wenselijke verbetering तपिके एकर बारे में बोले दोस्तों बोले हैं रखेरिंग बोले कुछ ना करे है बोले स्टेफर चेस फरविसलन आंध्र पॉलिटिकल फोक्यूरन सेटर ऑफ द पोस्ट इंटरवेल बोले वही पुराना कल्चर बोले वही मशीनियाँ चले है बोले बवेर करे है बोले पॉलिटिसी एंड पॉलिटिक्स स्पॉन्सर एंड खुद कोमन इन प्लाज्मा रेक्स रीज द बफॉल्किंग माँ बोले इको फरंदरिंग ना है Coalitie krijgt langs PK, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wakker he. Maar bole janta ke belang me bole usap kwana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahi. यानी कि फोर डील बनावे के द खसंत है सड़क एंड अंडरवेज बोले हैगा जेनिफर सिमोन्स के बोले है ग्रोथ टेस्टन मिशी काबा फॉरक्स फसंत है के जो मिनिस्टर हैं सेल्फ एन फॉर द ग्रोथ तो ब्लंडर बार खेरें के भैया मिशी काबा के जो पास्टर है और नाचत आयल है उजेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दीजिए भैया अब बोले एक को वार्ता ना होकर बोले अंडरवेज फॉलोस गेसोंथेड गेसोंथेड सोर बोले नीच स्टीफ ऑप ऑर्डर वर्डन खबरा बोले है स्प्रेक दार फन अन फॉल्स स्टार्ट सिमोन दे सूट मुत रे शफल बोले सेल्फ सिमोस के चाहे निकर जाए के ओके चाहे सेल्फ रे सफल हो के पीके ही बोले है बोले रखेरिंग से एक बरिश से बोले उस बैठल है और बोले बेर बेर अपन प्रॉब्लम वो घसकावे है फोर रख रखेरिंग जाए के लुका है कि उस सब चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कर ली बोले वही के सेन रे द रेनिंग इज सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बिलीव दैट बेटर टू डू Weet vooraf welke problemen er liggen. De kiezers heeft de nieuwe machthebber juist geschoven om de puinhoop op te ruimen. Achteraf blijven vertellen waar het allemaal fout was bij de vorige regering. Orgas KWK, Santoki, Brunswijk, regering probleem wakker is. Obole toe de lele politiek, dan moet je toch weten wat je allemaal staat te doen, Jano Baya. और फुटबॉलर्स गैला भैया नीदरलैंड से और देश से सिरिनाम में और सबके मिलल रहा डायस्पोरा के सिरिनाम से पासपोर्ट मिलल रहा
te hier paspoort kwestie van de diaspora voetbal kan dies bij staatsbesluit geregeld worden. Want Simon bole paspoort ons heb intrek zijn hoe ik en bole balwaat doen hoe ik deze khelwaar kreeg paspoort ze bija bole hoeven de wet nationaliteit bole 14 augustus ke 2026 tijdens vervolgbespreking commissie naturalisatie van nationale assemblee DNA ke ik erbaar mee wat ja hein bole de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe de je baant he voetballers ke bare mee toe hamari janta hum se chila yahan par dekha jaye ghadi ke or to ghadi ke or dekha jaye to yahan par driminuten ho chuka hai 3 minuten 4 12 ho chuka hai to mere khayal se aap log ko hum yani ki vigyapan ke or chalte hai reklam block chalana hai uske baad mein abhi hum turant aa jayenge and aha ek mein news 4 settlements zo gaan wij doen, de verplichte werkzaamheden moeten wij gewoon van tevoren gaan doen. Anders is het niet de juiste manier om te werken, mensen. Daar gaat het om.

तो दोस्तों अभी आप लोग रिक्लाम ब्लॉक को सुना है, यहाँ से हम अपना देश विदेश के समाचार को और आगे लेकर चलते हैं।

दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली यार फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गए हैं और शनिवार से ये गुम हो गया मैंसे इस फरमेश सातरख आवन से एक पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंडन एंड आंद्र बर्त्रोकन हैवन सिंस रात के ओके सब ना पाई से ड्रिंगन बरूप कर रहेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐट कैक नारदमान कि वो कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इसके जीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोली का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में। ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केरतो दी क्रोमो तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे सवेरे भैया अबैत हीफ आन खतरोखन ओकर भाई गए लेते कि से केरतो दी क्रोमो सोंदाख नौ खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली हैं अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्स हाथ ट्वेफल्स ओफर नतीलक दोत स्ट्राफ दोत ओरसाक बोले है हे कॉन्स्टेटेड अंडर मेर ब्लाउ प्लेकन ऑफ इट लिखाम एंड ब्लूड दैट आई द नेस क्वाम तो बोले इन नतीलक दोत ना है ओकर नाक में से खून भयल है और ओकर देही में ब्लाउ प्लेकन है ते एकर बाने में फोरेंसिस ऑफ स्पोरिंग दिन्स इन स्काकल भेल है बेड अंडरसुक वेद फॉर अस नॉक बोले इन ब्राक घरवा में ना भेल है बोले लेट्सल ऑफ इन लेखाम से इन फर्स्ट स्टेल और बोले बस लखनऊमन द साक इस और भैया तब पता मिलल है कि एक नतुरल के इदोच से ना मरल है। अब देखो भैया को नवा देना खबाओ है हाँ इ नौका देना खबाऊ है इ है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडिया हैंक आरोनस्ट्राट में एगो नवा देना खबाऊ है न्यू देना खबाऊ है तो हूँ आप एगो निगम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम आदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई आदमी जो नहीं फिर तक यार के है ये भैया अपना दम को थोड़ दिया है तो ये बड़ा दुख की बात है। काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है संतो बोमा के बात है एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि नीखन तीन यार के एगो ब्रोफिक्सर हैगा प्लॉट से

और जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर। दोस्तों, वहाँ पे निकेरी में, निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। तो निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा, उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे। मेयर वेरक माकर फन बेहतर वीखन रास्ता जोन है, बोला और बेहतर चाहे होवे के। और बोले जोन यंगरे है उ सबके काम भी चाहे मिले के, वेरा खलीखन है भी चाहे होवे के। बोले जो हेस फेस्टिंग है, बोले राइस सेक्टर के ऑन्टविकलिंग, बोले सब चाहे फॉर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार इस हिन एंकल सामे लीफिंग ओइ 100% अफ एंड मुतर ओवरहेड instanties en burgers gezamenlijk blijven werken aan de vooruitgang. तो इस सब चीज़ तो बड़ा बढ़िया देसी सोचे है। और अब सोचे तो बाटो तो अब चाहेगा देसी के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है, बोले आद शांत वेखन मुतर ओक आन खपाक्त वर्दन, बोले वेखन ऑथोरिटेकन वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले हैगा कुर्बान बब्बू बोले है देसी, बोले ना दुखरक विल इन सेटर फॉर यंगरन। और बोले फॉल्कस हार मुतर बोले मेर बानन और वेर खरीगन है चाहे हुए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया, बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है, बोले बलांगरेक प्रियोरिटी हैगा जोन स्लाइस है चाउर के जोन धान आदमी बोवे है ओके सब रीनो फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नो उदक है नो सेक्टर फर्दर कुनन ओंटविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है, बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है, बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्कंस आंध्र इनोफासी तू जो बाजार है ओ चाहे रीनो फेर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज ए टकोर्ट ऑन फक मेंशन, फक मैन से बोले बहुत कमती है। बोले जोन बहु में बा अब रेस सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स डीसी मुइलक इस तो फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दिस नीड अलेन इन निकेरी स्पेल मार अन लैंड के प्रॉब्लम इज मेड दैट फॉर वर्डन बुटलांसे आरबेस क्राफ्टन आंगेट्रोकन और डीसी रूप द सामलेवन ओ मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफब्रेकन फन एल्कार एंड kritiek is volgend teken, baboe. Janne DC heeft een goede gevolgen, mensen. Alleen als hij waar kan maken, pijswa hij kina hij, mevrouw. De DC, daar gaat het om. Dat gaat het om, mensen. En meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. तो अब देखा जाए भैया, हिया बतावे त्रिम क्योर हम तरी जाए बैतलान के चीवा बताई त्रिम खराब ओवर अनेक्साक्सी स्ट्राट फॉर होर्मूस ना नीदला फन ईरान। हाँ, अमेरिका बोले है तुलन जाने स्ट्राट होर्मूस के बारे में जहाँ सब बोर्ड पास हुए है। बोले उखरौन खबितवा जो ने बोले चाहे अमेरिका के हो जाए के, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले है वेल फरक्लारन नदत ईरान इस फरसलाखन है देद अपमेरकलिक अपस्प्राग फ्रागन टाइडन से बेइन कोस बेइन पुलिसी अकादेमी इन अमेरिका न्यूयॉर्क में द हुको फंक्शनरिस फन विद हेड फरक्लारड लेटर टेकनओवर अमेरिका से विद द ट्रंप अन ग्रैप मेकते एंड दैट देयर गेन प्लानन
voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grap karat raha ki hormuz okar ho jayega Amerika ke. Bole sai to drom hui te mu mase nikarege hui bhaiya to lon jano hai. Use pasar Groenland me go bedrijf se hua tel khode hai. En dat mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt. Zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerika's grondgebied verklaren? Zei Trump. Daarna voegde hij ernaartoe. Het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerdere bewering. Ki Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade waarmee de scheepvaart verkeert. Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bolle het scheepvaartverkeer is door de zeestraat sterk teruggelopen. Hormuz is van groot belang voor de internationale energiehandel. Op het eigen conflict passeren ongeveer 1/5 van de wereldwijde olievoorziening via deze route. Op het eigen nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Washington voert ondertussen ook de economische druk op Teheran. Verderop, Amerikaanse minister Financiën ke bole week nieuwe maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te Trump abbe bezig hai Iran ke bare mein. Hamari janta en wij leiden eronder om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Abbe de ko Suriname mee arman sunder mange hai loonsverhoging. Alle regering se Suriname onderhandel kere hai loonsverhoging ke bare mein. Go fuck beweging hai ga Rafak Sur. To Arman Sunder John Hega woordvoerder en Rafak Sur se mange he loonsverhoging van 25% lanti se. Maar lanti bole hem toke 25 na de maar 10% ambtenaren salarissen structuur met 10% aan te passen. Op bole hega vakbeweken bole hega zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9000 naar 15000. Want op dit ook een 9000 jaar te toke chahi belasting bereken te bole ook een grens chahi verhogen weken 15000 jaar. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd hen tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bolle Oehamlo Abbenakker Sakila. Bolle er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bolle hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging. Aur hi mange hai 25%. Beste luisteraars. To ye baat hai. Sunder ke ab dekho bhaiya Colombia mein aardbeving bhail hai. Aap log ko to ikar bare mein hum batai hai. Kitna log wahan pe maral hai. 280 mensen hebben de leven daar. Mensen ab batave hai ga an aardbeving was 7.4. Kostte 280 mensen het leven. Bijna 27 gargirge hai. Verwoest hoi ge hai. Sahar kan barka barka rasta. Sab toot ke saka hoi ge hai. Jaise go rasta ka naam ra Gali en Pereira. Bole miljarden schade deswa me bhaiya. Colombia ke minister joan hai. Bole hai. Bahur kritik paai se. Biete hoi hafta me. Aan bolega Caribische strand jo raha aan te relaxen. Bolega weekend beelden verschenen waarop te zien is dat hij op de Caribische strand aan het relaxen was. Aan bole ook erover kritiek. Bole dis me hiya hum log ke itra admi maral hai. Sab ghar bhi gir gaye hai. Aur jo na minister jo ghar ke bare mein jo hai festen ke jekar naam hai Jim Andres Beltran o jai ke strand pe relax kare hai. Ekar bare mein opposition links opposition ego moosi van
wantrouwen. Regering me indien kerise. Kritiek moment besloot vakantie te vieren. Bolle etra kritiek op de minister van Volksgezondheid. Huisvesting bolle gele vakantie vieren kere. Bolle bericht op ik schrijf de minister dat hij niet op vakantie was. Ik wil een paar uur doorbrengen met mijn vrouw en kinderen. Die ik al enkele dagen niet had gezien. Bolle Cairo tjoeiga van oude lardgen ke bolle nadekere. Bolle ohik mare bolle hem. Bolle usap ke dekhat maarte. Sakira heeft zomaar financiële steun toegezegd voor wederopbouw schoolien en beschadigd bij hem. Amerika filantroop Howard Buffalt, het zwaar getroffen departement Kokomeba, ja, Afro-Colombiaanse oorspronkelijke gemeenschap worden, Colombia met hun caprilon hoare. Ook er gemeenschap mee 2800 school beschadigd bij hen. Choco met mensen. Al betekent je hegaan. Schoolien zijn ze verbouwd geweken. Ik heb baren mee. Sakira aan de journalisten betekent ze. Je maar 1 miljoen dollar of 865.000 euro toegezegd. Colombiaanse zangeres ego he, bolle otra paisa toke hem debe. Colombiaanse zangeres zei dat ik 1 miljoen dollar was toegezegd voor de wederopbouw. Het geld zal naar de verwachting worden gebruikt voor het repareren van de beschadigde scholen. Kebare me naki ghar me dharie paiswa. Kono zangeres bhaiya miljonair he, to 1 miljoen dega. स्कूलिया के बनावे के बारे में हमारी जनता, तो आप लोग को बताइए भैया एसएलएम के बारे में बड़ा क्रिटिक है एसएलएम के बारे में एसएलएम रिएक्ट करी सेगा और ब्रेक ओवर खाओस samenstelling en functie van de RVC. Volgens directie is dat ongewijzigd. SLM kebare me. Oh, SLM Surinaamse RVC bhaiya raad van commissaris doen bole he. Bole hega. Aanleiding voor de reactie. Bole hega online publicatie hega. Sora tarike joan ware tijd dhari se. Bole hega chaos raad van commissaris SLM me. Of bole hega naar de aanleiding daarvan. Bole directie, bole gezamenlijk kennis te nemen van een bericht geven. Of bole hega ook de functie binnen de raad zijn volgende maatschappij. Bole kutjena verander bhail he. तो बड़ी लंबा चौड़ा एसएलएम के बारे में लिखा गया है हमारी जनता, तो हम बोली आपको कुछ छोटा रूप में आपको बता दी भैया, नौ आदमी के सूरीनाम देश में नेक फरदाख्तन फरदोरदेल इंसान फरमिशिंग फन तुई मनन दुई आदमी लाज भैल है ओकर बारे में भैया नौ आदमी के सभन पकड़ी से बतावे गरी से पड़का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्कूलन ते हैवन खमाक आन देलनाम आन एन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बरेडिंग हैंडलन मेट बट्रेकिंग ऑफ द वेट फन फरडोवेंड मिडलन uitvoeren van cocaïne of een poging daartoe, dan wel hen aanwezig hebben van cocaïne. De OM 50 jaar mangen hij aan bariske jal mangen hij. To isabke bhaiya jal milal hij. To jaise rahega iske baare mein aur aage bataenge. Bahut bahut lamba chowda iske baare mein bataye gaye hain jo aap log ko hum छोटा रूप में बताएंगे. हम जाते हैं अफ्रीका के ओर भैया, कोंगो में हम जा रहे हैं. तुरुआ पे बहुत बड़ा बीमारी है, चलल है एम्बोला के बारे में आप लोग जानो हैं. कोंगो में है दो लक्ष ओइट इन हिट लाउंड इतना आदमी न मरल रहा और देखता जनता अब की मरल है भैया. और ये बात है रिपब्लिक कोंगो में बोले 2325 आदमी मेंशन से लीफन को कोस एम्बोला से दौलक इन खस्कीडिंग जो अमेरिका अफ्रीकांस लैंड के है कोंगोलांस खतों से और अथॉरिटीटन बोले 4945 आदमी बस में भइल है और ई दो दिन लाख मिडल्स hoger raad dan 2018 of 2020 meer aan.
उस समय पे 2299 mensen maar al aan. Op het aanwezig daarmee dodelijkse Congo ooit heeft meegemaakt. Abole abki aur jana maral hai dosto. To iske baare mein bhi bahut lamba hai. Aap log ke hum mul mulle baat batate hain ki itra janta maral hai. Aur wo hai Congo mein hamare pyare pyare janta जो एक बीमारी है एम्बोला सब बोले है हमारे जनता। तो हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम के समाचार को लेकर। भैया वोनन ओपेड वाटर नीदरलैंड के बातचीत है इस नित खुद को जानो। यहाँ नीदरलैंड में चलियो तरीबा में मतलब पानी में बोट है वो उन बहुत जहाँ आदमी रहे हैं तो कितना आदमी बोलो तो घर द्वार ना है बोट पे घर बनाए के और वहाँ रे मा दत इस नीट खुद को मेंशन वो उन बहुत इस दूरदर दान अन है हाँ तो जेके मालूम ना है तो अब हम बताओ थे आप लोग तो यहाँ दनहाक में और कहाँ कहाँ पे जानो हैं कि पानी में घर बना है वही पे सब रहे हैं तो यहाँ बताए गए वो उन बोतन लेकिन इन मेरे जना है कि खुद कोप है मैं जो घर में हम लोग रहे ला उससे महंगा है वो है पैर फिर कांत मीटर एगो बोर्ड के बताल ये फोर और वो यस 20% और ज़्यादा भरिए जो हम लोग घर में रहे ला हमें दल एगो बोर्ड भी कहा है भैया फिर होंद सस्तक दैसन एरो और खमेरल एगो घर भी का है फिर होंद फिर नहीं तक दैसन एरो बताल फोर रिखिल रिखिलियर वोनिंग और बताए गए हैं वोन बोतन सैन इन मिडल फिर नहीं तक फिरकांत मीटर ख्रोत तेखन ओवर 118 फिरकांत मीटर बोट एगो गिमा रहे और कफे फिर नहीं तक फिरकांत मीटर रहे और एगो घर रहे और कफे 118 फिरकांत मीटर तो बोले ओसे देखिए तो बोटिया और महंगा पड़े है 20% मेर फिरकांत मीटर बेन खून वोने लिख द प्राइस और बेना 7500 एक फिरकांत मीटर तो किनिए तो बताए गए दोस्तों आलो वोन बोतन जो 2025 में रहा हूफ्ताद में verkocht laag in de hoofdstad Groningen, Rotterdam, Haarlem mee zijn er relatief veel verkocht van Arjarabikal Henga, Bollega de Ronde Veen, Wormerland, weder meer en meer worden naar verhouding eveneens veel woonweden verkocht mensen. Toen ketra admi soche hai ki hum बोटियन में जो घरवा बनल है वो सस्ता है मार आशीषित मेर फिर कांत मीटर इस दात नो ट्यूर्डर में से दन ओ हम जाए तेरी रुसलांद की ओर जनता। Opnieuw is een magazijn voor Ruslandse webshop wil beres door een droneaanval geraakt. Omwille in een magazijn vlakbij de Russische hoofdstad Moskou mee onthoudt een brand. Die inmiddels is geblust, dat zegt de regionale governor te Rusland. Met via Oekraïne dagen op betek via 620 drones richting Rusland. Met chalige he, hamare janta. En ja, betawe, Iran bole he, bole straat van Hormuz 19 augustus ke. ये बात 18 अगस्त की ये न्यूज है स्ट्रैट हॉर्मूज बोले पास ओपन आज फेस फेस अमेरिका हम लोग के जितना ऐस्ट है बोले सब देगा तब बोले हम लोग हॉर्मूज खोला हुआ अमेरिका दूसर बात बात बतिया है ईरान दूसर बात बतिया है ईरान बोले हम लोग खोलप जैसे वही के और हुआ अमेरिका बोले जैसे वो कर है लेकिन अब के कर है दोस्तों ईरान तो यहाँ दूसर बात बोले है ईरान से पार्लियामेंट फोर्सेतर बोले है टॉप ऑनदर हंडलार है मोहम्मद बखर गलीबास बोले है स्पीच में बोले है
Hij noemde het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van de sancties op olie en vrijgeven van de Iraanse tegoeden in het buitenland. Want tegoeden in Amerika's buitenland mee, frisker deze, bolle tap hamlo jaike kholab, bolle pahle hamar, jitra sancties tokale oke khol, sinds de oorlog 1 februari, Amerika, Israël, aanvalkere Iran koper, varen er nog nauwelijks schepen doorheen. Die leidt wereldwijd tot hoge prijzen, onder meer voor brandstofmensen. Bolle in het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat akkoord is inmiddels verlopen. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de straat van Hormuz, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropen, mensen. To Iran aise bole hai aur Amerika kuch oisen bole hai. Hamas ke or jai bhaiya. Hamas tulon jane hai ga terror groep hai ga Libanon mein. Hamas zegt verder te willen met proces richting vredesdeal. Ze mangen vrede kere Iran Israël ze. Gaza stad mee. Hamas mangen vredesplan kere Gaza mee. Of bole hega onder leiding je maar Amerika chahin reke. Of bole die steun is vooralsnog niet. Of bole hega schoonzoon je Amerikaanse president ke he. Heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël. Woordvoerder Hamas bole he. Hamsis Kuzem bole he. Tijdspadden en procedurele stappen die nog ideaal in de teel uitgewerkt zullen moeten werden. Oorlog hote he bhaiya tulunjano Pakistan ke or hem jai. O Pakistan me bhaiya oudjon president wakara premier ha. Oké, jahal manse saban nikaris omdat u bemaar he. Tulon jane he am Imran Khan 73 jaar ke. Oké, saban pakad ke ban karle raha nawara khiring aail he. To hospital me bhaiya bahut bemaar he. O bole he ga ho kharek Pakistan ke. Bole he ga Imran Khan ke. Bole 2023 me vast in veroordeelde in verschillende zaken. Onder meer voor fraude. Partijgenoot naar Pakistan. Tirig Izaan bole, familie maken zich zorgen over zijn gezondheid, mensen. Op bole hega, u bemaar he, hooggeruif moet gaan binnen 28 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht. Tot 16 september blijven. Op bole Khan werd 2022 mee afgezet. Sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken. Afgelopen december werd hij veroordeeld tot 17 jaar gevangenis voor fraude. Andere zaken gaan onder meer over massmisbruik en opruiming. De oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemt de veroordeling politieke moffies, mensen. To aanplukken om Egypte ko ausuna dete hee.

तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूतस हो गया है, फीरन देर तक बूतस मिलल है फ्राख्त वाहन के अप्स को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग कार्ड के नीलांग के बांचित हुए है रेक्स वांस स्थान सोमार के फीरन देर तक को बूटू लिखे से फ्राख वाहन के और टूरिंग कार्ड के जो मेर वेड़ ब्रुख पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Ubrukiepen zei, nam mag je zwaar verkeer jijke. En is op chalai raha, motoragenten, sabke pakli se bhaiya. Bolle hega touring cars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leiden agenten en een voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaterstaat. Dit schreven meteen een boete van 500 euro. Ja, hoe direct ligt die he? Tera saath hai to. To, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis ki samachar jun aap lon suna hai. Yahi aasha umeed se ki aapko hamara samachar jarur acha laga hoga. जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आप सबको हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाब और अदाब सलाम नमस्ते।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो वर्हुरबेड्रिव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

0: हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और कुछ बदलाव लाते हैं प्रोग्राम में, और कार्यक्रम ऐसे चलेगा। एक शायरी लेकर हम आज भी उपस्थित हैं, आप सबके सेवा में पेश हो जाए। कब आप हंसे थे या आपके हंसी चोरी हो गया है, आप सुन लीजिए ओपनिंग मोटिवेशन आपके नाम पर। आखिरी बार, पहली बार, कितने बार आप हंसे थे?
1: क्या एक बात सच सच बताओगे, आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार कब चांद तारों को जलते देखा था, सूरज को उगते और ढलते देखा था? बहती नदिया में कब कागज की नाव चलाए थे? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार कब करी थी मासूम सी शैतानी? आखिरी बार कब सुनी थी परियों की कहानी? सपनों की दुनिया, सपनों के महल कब सजाए थे? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार हंसते हंसते कब पेट दुखने लगा था? बारिश में नाचने का अरमान मन में जगा था? मस्ती में झूम के कब गीत खुशी के गाए थे? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? बहती नदी की धार से पानी कब पिया था? जिंदगी को खुल के आखिरी बार कब जिया था? पागल उसी मस्ती आखिरी बार कब करके आए थे? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार माँ की गोद में कब सोए थे? आखिरी बार दिल खोल कर कब रोए थे? आखिरी बार कब खुद के अजीब से चेहरे बनाए थे? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार कब दिल पे हाथ रख के धड़कनों को सुना था? आखिरी बार कब तारों को गिना था? आखिरी बार कब फल पेड़ से तोड़ के खाए थे? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार कब कहा था मैं खुश हूं और जिंदगी खूबसूरत है? आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? आखिरी बार कब कहा था मैं खुश हूं और जिंदगी खूबसूरत है? प्यार, हंसी, मुस्कान, खुशी, बस यही जिंदगी की जरूरत है। क्यों हंसना भूल गए हो प्यारे, जो ये भी पूछना पड़ा, आखिरी बार आप कब मुस्कुराए थे? सच सच बता।

तो ये प्रोग्राम में हम लाते हैं कुछ शायरी और कुछ गीत और संगीत, कुछ शिक्षा भरी बातें जो आप शायद हो सकता है भूल गए होंगे। जिंदगी के दौर में नीताल स्खात ओवर रोजन वंत रोजन दी हैव ओग दोर्नन।

एक और खूबसूरत सा शायरी में खोजबीन कर लाया हूँ, आप सबके सेवा में प्रस्तुत होने वाला है। गौर से सुनते जाना, यहाँ से पेश होने वाला है

दर्द है और गम है, आंखें भी मेरी नम है, लेकिन ये उम्मीद है, ये विश्वास है, मैं फिर मुस्कुराऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। तूफान दुखों का आता है, जिंदगी को बिखेर के जाता है, लेकिन मैं फिर से नई दुनिया बनाऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। ना राह दिखती है ना कोई मंजिल, मझधार में है नैया, दिखता नहीं है साहिल, लेकिन मैं नया रास्ता बनाऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। मिली जिंदगी में हार है, दिल टूटा बार बार है, फिर उठूंगा फिर लड़ूंगा, पहचान अपनी बनाऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। साथ दोस्तों ने छोड़ा है, मुंह अपनों ने भी मोड़ा है, गम नहीं है अब मुझे, मैं प्यार लुटाता जाऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा। खुशियों की चाहतों में मैंने जिंदगी को खो दिया, फिर चलूंगा फिर जीऊंगा, नई जिंदगी बसाऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा, हर दर्द से मैं जीत के दिखाऊंगा।

0: और इसी हंसी और मुस्कान के नाम से आपने सुने कुछ शायरी, जो छीन जाते हैं, खो जाते हैं कहीं पर, तो उस पर गीत मैंने खोजबीन कर लाया हूँ। यही विषय है हंसी और मुस्कान। दर्द और गम नहीं, उसे कहीं खिजोरी में बांध कर फेंक दिया करते थे लोग, आज लोग तो उसमें अटक जाते हैं। अच्छा, तो जगजीत सिंह को लाते हैं प्रोग्राम में, ये सुंदर सा गीत, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। क्यों क्यों हमें हंसना चाहिए?
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: हुसैन मारमेंस, हम सब इंसान हैं।
1: मुस्कुराते रहो जिंदगी,
0: हंसी निकल जाए, छूट जाए, चोरी हो जाए, तो हम नहीं हंस सकते हैं।

और जिंदगी में सदा ही मुस्कुराते रहो। आकाशवाणी के दोस्तों, ऐसे ये बात आज विषय है, आप सुनते हो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो को।

अच्छा तो एक गीत तैयार है आर डी बर्मन फ्रॉम द फिल्म रोमांस, और ये गीत बहुत अर्थ भरी गीत है। और जिंदगी के मुस्कुराहट अगर आपसे कोई छीन गए हैं तो ये गीत, ये जिंदगी में आपने कुछ सही मैंने कुछ सहा है आप भी, और ऐसे बात चलता है मुस्कुराहट। क्या आपने सही हैं, ये जिंदगी भी कुछ भी नहीं है।

0: The great voice of Rahul Deo Barman. जिसके लिए ये जिंदगी कुछ भी नहीं,
1: बस है कमी उस नाम की,
0: ये जिंदगी क्या है क्या भी नहीं सहा है, और सहते जाते हो आप, और कंपोजर लिरिक्स आनंद बख्शी। मुस्कुराहट के बारे में हम आज बात करते हैं। जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जरूरत है। Dag niet gelachen is een dag niet geliefd.

0: मुस्कुराए जा, मुस्कुराते रहो। और इतने गीत हैं गीत और संगीत में,
1: तेरे दोस्तों में यूं तो कई नाम आएंगे,
0: मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। इतने इतने गाने मुस्कुराहट पर ध्यान देते हैं, तो क्यों आप दर्द में रहते हो। हम आपको सुना देते हैं एक और शायरी, क्योंकि आप परवाह करते हो तो ऐसे छीन जाते हैं आपकी मुस्कुराहट। बहुत ज्यादा परवाह करने में, चिंता चिंतन करने से ये सब होते हैं।

0: किसी से कुछ पाने की मैं कोई चाह नहीं करता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता। लोग क्या सोचेंगे, इस सोच ने मुझे खुद के लिए सोचने ना दिया। करे तारीफें या बुराइयां लाखों, लेकिन अब मैं कुछ सुना नहीं करता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता। ख्वाहिशें खुद की भुला के खुशियां सबकी चाही सदा। बदले में आंसू मिले, दर्द बे इंतहा मिला। लेकिन अब खुश रहता हूं, हंस लेता हूं, कोई गिला शिकवा नहीं करता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता। प्यार भी दिल से किया, हर वायदा पूरा किया। बदले में धोखा मिला और दर्द ही मुझको मिला। किसी के झूठे वायदों पे मैं अब एतबार नहीं करता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता। दूर ना हो जाए और पिछड़ ना जाए मुझसे कोई, इस डर से मैं हमेशा ही डरता रहा। जाने वाले जाते रहे, आने वाले आते रहे, किसी के आने जाने से अब मैं नहीं डरता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता। यादों में डूब जाने की एक आदत सी थी मेरी, प्यार में कुछ भी कर जाने की एक चाहत सी थी मेरी। लेकिन सच्चे प्यार की कद्र अब कोई नहीं करता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता। किसी से कुछ पाने की मैं कोई चाह नहीं करता। रूठे या मान जाए कोई, अब मैं परवाह नहीं करता।
1: परवाह नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी के दोस्तों, खूब तौर से ये बात आप सब ने सुने हैं और ध्यान से सुने हैं। मुस्कुराहट का वजह वही है कि अगर मुस्कुराहट कोई छीन जाए आपसे तो हम परवाह नहीं करेंगे। अगर आप ही वजह हो मुस्कुराहट में, मैं परवाह नहीं करता हूं। अरिजीत सिंह आप सबको सुनाएंगे।

यही आज के विषय था। कुछ शायरी आपने सुनी, अब मैं परवाह नहीं करता। मेरी खुशियां मुस्कुराहट किसी और के हाथ में नहीं है। मेरा हिस्सा प्रोग्राम धीरे धीरे समाप्त होने पर आया है। आप सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद कहता हूँ। मेरा हिस्सा जैसे मैंने कहा समाप्त होने पर आया है, तो एक आखिरी गीत हो जाए और आप सबको मैं एक शुभ रात्रि कहता हूँ। एक शुभ रात्रि, और फिर मिलेंगे, ज़रूर से मिलेंगे। कल शाम के समय में मैं फिर उपस्थित हो जाऊँगा, शाम और रात्रि के समय में। फिल्म अनारी से हम निकालेंगे ये गीत। आप सबको राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हरि ओम, हरि बोल। फिर मिलेंगे, ज़रूर से मिलेंगे। आप सबको एक शुभ रात्रि।

दिल से तेरी नाइट फीवर ऐसे आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के दोस्तों, दिस इज द रिदम ऑफ द नाइट। और रिदम ऑफ द नाइट क्या कहते हैं आप सभी को मैं पहुंचाऊं, जो द रिदम है ओरिजिनल द रिदम। अच्छा, तो देखते हैं क्या इस बार खोजबीन कर हम लाए हैं। एक पूरा सिलेक्शन लेकर मैं उपस्थित हूं। Green what wills चटनी बैठक, बैठक में टर्म चटनी

let's play it out. सुरिनम स्टाइल मिक्सेस और रिमिक्सेस इस वक्त चल रहा है, झूलना झुलावे रमेश चंद्र बिहारी।

De Master Blaster, ऐसे आप सबको सुनाए हैं बैठंगाना मेडली, और गाने वाला था देखते हैं बैठंगाना मेडली बाई मास्टर ब्लास्टर, और मास्टर ब्लास्टर ऐसे मिक्स और रिमिक्स किए हैं रमेश चंद्र बिहारी, ऐसे आपको सुनाए हैं कंगनवा चुड़ावे, और ये भी एक रिमिक्स सीडी से निकालते हैं, और साल 2008 से निकालते हैं।

लाता हूँ। अच्छा, गाना के खोज में ऐसे ऐसे समय निकल जाता है। दी चटनी स्लैम, और आज रात्रि के समय में आप सभी के वास्ते कीप ऑन स्विंगिंग नॉन स्टॉप।

तो इसे आप जानते हो आकाशवाणी के दोस्तों की सरनामी स्टाइल कुछ अलग सा स्टाइल है, अलग सा स्टाइल है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड और धमाका चाहिए और मसाला उसके ऊपर मसाला और चटक मटक होना चाहिए फास्ट फॉरवर्ड। और वही धुन पर भी नाचते हैं जैसे गर्मी छाई है। अरे तेरी याद में मारे गए हैं।

और ये जबरदस्त रिमिक्स आप सभी के वास्ते दिस सैटरडे नाइट फीवर। उम्मीद और आशा है, पूरा उम्मीद और आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि आपने मनोरंजन जरूर से प्राप्त किए होंगे।

सुरीनाम स्टाइल मिक्सेस। ये है सब सुरीनाम स्टाइल मिक्सेस। मैं शुरुआत से फिर रख देता हूँ, आप गौर से सुने और मजा लीजिए। Kijk, ik ben niet elke dag, maar als ik kom, dan wil ik graag dat de mensen hele, hele leuke tijd hebben met de radio. Radio van Hon, aapki happy

और इसी कंचन की आवाज में आप सुने हैं द मिक्स एंड द रीमिक्स। ऐसे चलता है आकाश शिवानी के दोस्तों और लोटे लाल ऐसे कितना बेमिसाल ऐसे सजाया गया है मिक्स और रीमिक्स में, तो सदा ही चलता रहेगा ये गाना। तो एक अनमोल गीत है, कितने सालों पहले से ये पता नहीं है, 20 साल हो गया है, 30 साल हो गया है कि ये बहुत मशहूर हुआ था। Let me see your hand। अगला गाना आप सुरिनम स्टाइल मिक्सेस से जबकि चल रहा है तो आप जानते हो छटक मटक मटक मटक चटनी मसाला उसमें डाला गया है।

आप सभी सुनने वालों के नाम पर इसे चलता है और चलते आए हैं मजेदार प्रोग्राम यानी कि वीकेंड प्रोग्राम द सैटरडे नाइट फीवर।

आप सबने खूब नाचे हैं, फिरे हैं और एक टांग पर नाचे हैं, दो टांग से नाचे हैं, बिना टांग के नाचे हैं, ऐसे गाना लेकर मैं प्रोग्राम धीरे धीरे समाप्त करने पर आया हूँ। देखते हैं ये गीत चला दूँ आप सभी के वास्ते बीच अंदर स्टाइल। आउट इट लुक

न्यू DAB प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरी सो सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सो का चटनी है दोस्तों।

0: और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेट सालिक की ओर, ये भी एक सुकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।
1: ना, ना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खत नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो।

0: या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिज गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज़ की चांदी

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फाउ हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है। ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए परिवार के दो मृत्यु समाचार है कार्यक्रम में। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp और Zeeland से परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 5:30 बजे यानी 7:15 पर 85 साल के आयु में इंदलीफ तहत फन 85 दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफुआ ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, 30 लड़कन यानी दर्त केंद्रन, आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा की छोटकू, लिम्बेरुख से बहन हम लोगों की बहन आनी इंद्रावती सरज मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता, सेलंत ओ सुबेरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंद्राज सिंबुदत्त सरज मिश्र का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूरीनाम में वेलखलेखन के निवासी था और वेलखलेखन स्कूल का लेरार था। ऐतफात यानी कि शव का दर्शन आप कर सकते हैं हेल्सेवस लंत में नंसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। हम दोहराते हैं हेल्सेवस लंत नंसन बान कंत व्यक्तवेई खुश में। अर्थी को आप देख सकते हैं 18 अगस्त को 5 बजे से 5:45 बजे तक 7:15 तो क्वार्ट फोर सेस, और अगले दिन 9:15 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओफर सेफ तक हम दोहरा रहे हैं। देखने का अवसर है 8 अगस्त 7:15 तो 7:45 यानी 5 से क्वार्ट फोर सेस तक, और वंसदाग 9:15 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओफर सेफ तक। आने वाला दोंदरदाग 20 अगस्त शाम 2 बजे नंसन बान कंत वे के क्रेमेटोरियम में दाह क्रिया किया जाएगा खुश में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 06 22 42 12 31। खबर को हम दोहरा रहे हैं। Den Haag, Tegelen, Limburg, Leiderdorp, Zeeland से समस्त परिवार गंगा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि दो सार चंद्रसेन गंगा और नन कुमार गंगा का बहनोई, कारला गिरधारी का नंदोई, निर्मला गीता प्रवीण और रेखा का फुफ्फा, 17 लड़कों का नाना परनाना और फुफ्फा ससुर और ननवा ससुर, लिम्बेरुख तेखलन से सुरेन सुनीता धुरेन मनोज जयदेव आनंद का मौसा, और 30 लड़कों का आजा पर आजा नाना पर नाना मौसवा ससुर अजवा ससुर और ननवा ससुर, बड़की सविता गंगा के छोटकू, आनी इंद्रावती सरज मिश्र गंगा के पति, बेटा स्वर्गीय हैंक जयराज का पिता,
सेईलांत के निवासी और सुबेरो के निवासी श्रीमान पुण्य आत्मा कोनराड सिंबु दत्त का स्वर्गवास हो गया है 85 साल की उम्र में बीते हुए शुक्रवार 14 अगस्त क्वार्टर फॉर फाइव को, जिन्हें आप ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और वेल्खलीकन में सूरीनाम में उनका निवासी था वहाँ का और वहाँ का स्कूल का लेरार भी था। शव को आप देख सकते हैं हेत सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश में दिन दख 18 अगस्त के 17 यूर तत् क्वार्ट फोर सेस और वूंस दख 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक। डाकरिया आने वाला दोंदर दख 20 अगस्त को 14 यूर यानी शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवेई खुश सेलंत में। जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622412131।

0: दूसरा मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: सेलंत हुस ओ सुबेरख से परिवार सरजुमिसर, परिवार सरजुमिसर बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर 5 शाम को 85 साल की उम्र में यानी इंदलीफ सईद फन फैफ तख्त यार दो बेटियां शकुंतला और शर्मिला सरजुमिसर के पिता दो दामाद राज या राजन रौप कुंदन पांडे और हेमंत रघुनाथ का ससुर चार बेटा शोस बोइक अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नतपतो के आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर तीन बहुएँ यानी सोन दोख्तर्स गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता सेलंत और सुबुरख के रहने वाला श्रीमान पुनिया आत्मा कोंदरात सिंबुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम वेलखलीखन के निवासी था और वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार था। शव के दर्शन आप कर सकते हैं एथफार सेंट्रम हेथ सेव सलोंद ननसन बान कंत वेख्तवी खुस में दिन्स दख अख्तिन अगस्तस को 17 ईयर से क्वार्थ वर्ड सेस्तक और 19 अगस्तस को हालफ सेफ से क्वार्थ ऊफर सेफ तक डाक्रिया दोंदर दख 20 अगस्तस 14 को शाम 2 बजे वही एड्रेस पर ननसन बान कंत वेख्तवी खुस सेलांत में। खबर को हम दोहरा रहे हैं सेलंत हुस औ सुबर से समस्त परिवार सरजुमिसर कुंदन पांडे रघुनाथ श्यामलाल और तुलसी बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि फ्राइडे 14 अगस्त को क्वार्ट ओवर 5 शाम को 85 साल की उम्र में इन द लीफ तहत फन फैफन तख्त यार दो बेटियां शकुंतला शर्मिला के पिता दो दामाद राजन या राज रौप कुंदन पांडे और हेमंत रघुनाथ का ससुर चार बेटे शोर्स या बॉय के भी कह सकते हैं अर्नोल्ड रामोन रोमेयो सरजुमिसर का पिता 20 नाती नातिन पोता पोतिन पर नाती पर नातिन नदमाद और नदपतो का आजा पर आजा नाना पर नाना अजवा ससुर और ननवा ससुर गीता श्यामलाल उषा तुलसी अरुणा अयोध्या का ससुर पत्नी इंद्रावती सरजुमिसर का पति स्वर्गीय बेटा हैंक जयराज का पिता सेलंत और सुबुरख के रहने वाला श्रीमान पुण्य आत्मा कोंदरात सेम्बुदत्त सरजुमिसर का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर। आप उन्हें ज्योतिष के नाम से भी जानते थे और सूर्यनाम में वेलखलीखन के निवासी था और साथ ही साथ वहाँ वेलखलीखन का स्कूल का लेरार। शव का दर्शन आप कर सकते हैं एथफार्ट सेंट्रम हेथ सेव सलंत ननसन बान कंत वेख्तवे खुश में दिन दख 18 अगस्त को 17 ईयर तौर क्वार्ट फोर सेस और वंसदाख को 19 अगस्त को हल्फ सेफ से क्वार्ट ओवर सेफ तक डाकरिया दोंदर दख 20 अगस्त शाम 2 बजे ननसन बान कंत वेख्तवे खुश सेलंत में डाकरिया किया जाएगा। बैठक घर पर नहीं है और जानकारी के लिए तार का नंबर दिया गया है 0622 24 12:31.

इंसानी रेडियो, सभी परिवार सरजू मिसिर, सभी परिवार रघुनाथ, कुंदन पांडे, तुलसी, श्यामलाल, सरजू मिसिर और गंगा को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। सहन शक्ति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है।

द्वारा पावन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर रहा है। फिर धीरज से ले दे सभी सावन सुनने वाले से निवेदन है कि ये खबर को और आगे तक पहुंचा देने को। यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। आइंदा

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरी सोग सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सोका चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

0: और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शोकास सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो
1: लाइव रतन हाग बाहुम हिंदुस्तानी रेडियो

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाम, सस्त्रीय काले।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं, हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापेई की ओर। फेहापेई की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापेई की बस्ती जो है हमारी जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापेई का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापेई तो ओवरवेगन इंडियन से फन आउट द पार्टी एंड फर्स्किलेंडर स्ट्रक्चर वर्ड का फ्रा सिख कैंडिडेट स्टेलन। बोले वो बर्रई थे फोर सीटर स्काप लेवे के। बोले जब ओके फेहापेई के कैंडिडेट बोले स्टेम करी तब वन अब स्टेम होएगा कि के फोर सीटर बनी फेहापेई के। बोले बलांगा रही खेगा कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एंड बरुक दून बोले जालिक है ओवरवेगन दंत सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंडे यार आने वाला साल में मई में फेहापेई के बस्तूर फॉर किसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है एर्दर दित यार बोले और फुर्सतर तुलन जानो है चांस तो कि उसका दीवार प्लोसिंग ऊपर लेने में से। और बताए गए ये है जहाँ पे हम लोग के फोर सीटर्स का वार्नी मस्तैलक ग्लेन उलर्स आंतवेजन आल फोर सीटर। और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापेई एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सबन किस करेगा। और बोले हैगा फेहापेई बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा। बोले आल्स वेर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन हो वर्स्यूर बतावे फेहापेई के कि बोले 76 यार फेहापेई के बस्तांत है। और बोले फेहापेई बोले दोर माक इन द सामन लीफ बोले नरम गरम ऊंच नीच बोले सब हम लोग मी माक कर चुकली बाटी। और बोले फेहापेई आइट एंड के गो स्टेर कर तरख कौम बोलो फिन से तरख आए एकर बारे में अंदर फोर्सेटर जोन है फेहापेई के आशीष कुमार गया दिन। वो बोले हैगा बिनंद पड़ते सैंदी बे हम आंद्रिंगन कि बोले हम भी फोर सीटर्स का बोले कि कैंडिडेट अनस्टेल कर कोई बोले तनसे ये सब कोई हमें किस करी तब वार दौर है बेसक इज अ खुद टीम तो सुकन फॉर दैट है इवेंटुअल सो अ स्टॉप सेट। और हो वर्स्ट्यूर्स के लेते महेंद्र गया दीन उस सफा बोले है बोले हम यस मांगेला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले ऑफ अनखस्किक्ट कैंडिडेट बोले हो पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओफन खुद से ही kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de co-voorzitterschap mee mee hoe ik aan verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. और ये बात बोले है मथुरा बोले है उत्तराधीन से बोले हम बाटी। तो ये बातचीत है फेहापेई के अंतविकलिंग के बारे में आप लोग को हम बोली थोड़ा से बताए दे भैया सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल। और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा वही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस तू द खवान एंड फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बॉक्सिंग भैल है। और बतावे 16 तारीख अगस्त के अतवार के एगो सेफ

CCTV camera must have. Anton Drachterweg, Bonistraat me. Oei, mego 48 jaar ken me jijke. Bikostraat, Sint-Nicolaas en Trumse jijke camera me stuur me maar dit bij jou. De oké gaat to abbewees koje kena he. Wat hoe op het sublikel he. Oplevel he. कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से देखा रेनिंग भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सुरनाम पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बॉप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना दिसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोली से रखीन जिमोन के बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश फॉर द रेस्ट बोले उस सब देशों हमें कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान क्या उस सिमोन के बोले है एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक को चीट न फरांद नौ लिक्स बोले हम लोग अपर पटमुनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ऑन्टविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खान जो हम लोग के सलार से दुकान में जो प्राइस से फर्स्ट बस्तान द सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये Dus daar ziet hij volgens eigen zeggen geen wenselijke verbetering. Tepieke ik er bare mee bole dosto, bole regering, bole kuchna kare he, bole stuivertjes verwisselen, andere politieke figuren zitten op de posten terwijl, bole ohi purana cultuur, bole ohi masinia chale he, bole beweer kare he, bole politici en politiek sponsoren ten goede komen in plaats van rechtstreeks de bevolking, maar bole ikko verandering na he. Coalitie krijgt langs Piqué, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wakker he. Maar bole janta ke belang me bole usap huana baitale. Pehle okar partij ke admi ke chahi. Yare ki voordeel banawe ke de gezondheidszorg en onderwijs. Bole hega Jennifer Simons ke bole he. Grote testen, Missy Kaba volksgezondheid ke jo minister he. Zelf een van de grootste blunderbare regering ke bhaiya Missy Kaba ke jo pasteur he. और नाचत आयले उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक को वार्ता ना होकर बोले ऑनदरवेज फॉलोस गेजोंडहेड गेजोंडहेड सोर बोले नीच स्टेफिग ऑप ऑर्डर वर्डन गब्रा बोले हे स्प्रीक daarvan van een valse start सिमोन दे सूट मुत रे शफल बोले सेल्फ सिमोस के चाहे निकल जाए के ओके चाहे सेल्फ रे सफल होए के पीके बोले है बोले रख हेरिंग से एक बरिश से बोले उस बैठल है और बोले बेर बेर अपन प्रॉब्लम वो घसकावे है फोर अखर हेरिंग जाए के लुका है कि उस सब चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कली बोले उही के से नरी द रेनिंग इज सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बिलीव दैट बेटर टू डू वेट फॉर ऑफ वेलकम प्रॉब्लम एर लिखन द कीसर्स हैव द न्यू मैक्ट हैव द यूज गेस्कोवन ऑन द पेन होप ऑफ द रेमन अखतरा ब्लेवन वर्टेलन वर allemaal fout was bij de vorige regering. Orgas KWK, Santoki, Brunswijk, regering probleem wakker is. Of wil je toegelegen, lele, politiek, dan moet je toch weten wat je allemaal staat te doen, Jano, bij jou. Of voetballers gaan, bij jou, Nederlandse, of deze Suriname mee. Of subke milella, diaspora, Surinaamse paspoort milella. Toen hier een paspoort kwestie van de diaspora voetbal kan dies bij staatsbesluit geregeld worden. Want Simon bolle paspoort ons heb intrekt zijn hoe ik en bolle balawato doen hoe ik deze heb gelwaar kreeg paspoort ze bhaiya bolle hoeven de wet nationale he
tijd. Bolle 14 augustus 2026 tijdens vervolgbespreking commissie naturalisatie van Nationale Assemblée DNA. Ik herbaar hem wat ja heen. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe. De jebante voetballerske barimi.

एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है, जिकर नाम है लेस्ली यार फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गया और शनिवार से ये गुम हो गया मैंसे इस फरमेश सातरा आवन से एक पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंदन एंड आंद्र बर्त्रोकलन हैवन सीन्स रात के ओके सब ना पाई से द्रिंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐत कैक नारदमान के वो कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इस कजीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोड़ी का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इस बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केर्तो दी क्रोमो ते एक लाश लेक मिलल है सवेरे भैया अबैत हीफ आन खतरोखन ओकर भाई गए लेते किसे केर्तो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्श had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Terwijl een natuurlijke dood na hij, ook er naak met zich groen bijl hij, en ook er dehi met blauwe plekken hij, de ikker bane mee. Forensische opsporingdienst in schakel bij de onderzoek werden vooralsnog in braak garoa met nabijl bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld en bolle beslag genomen de zaak is over via te patamilel एक नतुरलक ई दौत से न मरल है। अब देखो भैया को नवा देना खबाऊ है, हाँ ई नौका देना खबाऊ है। ई है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडियो हेंक आरोन स्ट्रांत में वो नवा देना खबाऊ है, न्यू देना खबाऊ है। तो हूँ आप एगो निगरम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम आदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई आदमी जो निगरम फिर तक यार के है ये भैया अपना दम को थोड़ दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है, काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है, संतो बोमा के बात है। एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि नीखन तीन यार के एगो प्रोफेसर हैगा प्लॉट सेलिंग भैया। अब एगो बस आई को बोमा वेख में बोले तैदन से केरन बोमा वेक में को बेस ओके मारी से और ये लुंडा नहीं खंतीन यारख बालगोबीन देफिस बालगोबीन और अपना आंद्रे नेंग भैले भैया और बोले द यंग मान बोले ई अतवार के दुई मिला से प्रोफिस पे जात रहा और बोले एगो त्योता हिशाई फिशर रहा और बताए गए है बालगोबीन ओफर बोमा में खरीद इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खानवे तेर होगते एगो पांत लगे
beleggen vermoedelijk een rechtswaartse stuurbeweging hebben gemaakt om te keren. Isab Mangis Gumawe. Tijdens deze manoeuvre kwamen de bromfietsen in botsing met de auto. Isab Nakhjalkerise. Door 20-jarige, door de harde klap, liet de balgobin ernstig lensel op. Obole, hij overleed, mensen, jammer. 29-jarige Lundake die hand hoog ja, hey. Bouwdoekje baante. Bolle Suriname rijbewijs verkeerde tijden van de aanrijding niet onder invloed doen. Beswatcha lautra. Udaru na pilera bhaiya. Ouri bichara. Ke die hand hoog ja. Bahut aanrijding hoe bronfise bhai. Suriname kadensi ke tulon jano he. Feya peyer he. Kadensi bolle ding no kinka next. Simons bolle traha. बोले वो किंग का इसी स्टीम की सिस्टम किंग की ना भैले भैया इकर बारे में अर्तेस बोले कदेंसी बोले फॉल्कर्स आर्नोल्ड बुकरू ओकर नाम बा अर्तेस ओकर नाम बा कदेंसी बोले रखेरिंग उइट ओम इस्ट फरंदर उइट द लिस्ट फन बलोफ्टन दी से टाइडेंस द फर्किसिंग कंपनी हैव कमांड. Cadenzi stelde dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek hadden op VHP. Is op kritiek kregen op VHP. Kien ba bole apre. Bole kuch na karise. Admi ke je ungri de khaiya bhaiya. De char go tor kanti awe hai. Dus ego kar kanti ma char go tor kanti de kha hai. Je koik upar je ungri de khaiyo. To kosis kariyo. Kosis kariyo ki. Tu apan kaam moi se kare hai. Leki Simons Rusland apan kaam na moi kare hai. Kadensi bole hai. Belasting toegevoegde waarde BTW werd ingevoerd. Iets meer dan een jaar regering Simon. Verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Belasting John Bolle Hamloon. Sinds ook in Lagaira is een man dat ze terugdraaien. Maar ik kon terug naar draaien. Is die belasting en ben ik naar hoofd te bereiken. Bolle hij ziet dan aanhouden de steking. Doe ik aan met prijtje. Ja he. Bolle den ook kinkie. Next me het dag regering die zie. Uit Mickey den kinkie. Want Sunny. Chan was niet goed toen hij alle subsidie afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer train trekken. Dat mik ding ben. Regeer dat die Chan ben pina a volk. Bole Chan dharer aan BTW. Chan subsidies aftrekken. Laat deze bolle traan namoe kaam karise. Bole wo kinka systeem. Te bole abtoke chahe BTW ya terugtrekken. Kijk je admik BTW na hoefbarke. Want Chan dhalle raat tulom bole raha namoe het kinki karna. Bole hega subsidie joan Chan sab intrekken. Le raat bin loke des ke paisa bachawe khati. Te bole kahe na tu phin subsidie kare hai. Bole kuchhi sab na karise. Santoki Brunswijk 2020 mee. Bolle financiële ravage doen. Isab Kalleraha heeft overgenomen. Bolle hega. Euro IMF ze bolle. Op programma's aan Santoki Brunswijk Kalleraha. De huidige regering heeft echter geen IMF programma om uit te voeren. Maar desondanks zijn verbeteringen niet merkbaar. Bolle isab te verplicht binnen IMF. Ke programma verbeteren. En volg kreeg bolle toch isab bolle kutschra karpaise. Bolle hega kom. En jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan. Al dus VHP'er. Cadenzi vindt het jammer. Ki janta jon he. Politieke partijen houden dan van Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte jon sarmakame bhail he. Op bole officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bole he. Bole de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. Toen je ze bemaat cadensie bole code rood in je aheer kondre abode al dus cadensie dus to aap lok ko hem ek geet sunate he to abhi hem turant wapas a jayenge.

0: और त्रफसी बुगरू का ये जों है हैस हाउस खोल। कोई जमाना में बड़ी टॉप सॉन्ग थी दोस्तों। उसके बाद में हम चलते हैं ई वंग एस बोंग और उज्जर मछरी।
1: अवे दिविसी

पुंता हो और पुंता वानी किरमी, तो दोस्तों जवानी याद हो जाते हैं, पुराने यादें आ जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो और क्या है, क्या है अगला गीत, ईवान की ओर हम जाते हैं, आओ सुना जाए। यो भी पॉपी सॉन्ग।

ये फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी और चित्रा लोवे चित्रा कोई के साथ भाग्य है और ये कौन चित्रा है सब चित्रा ना भाग्य वाला है कोई भग जा है सर मक्का कोई भग जा है कंडाल कोई भग जा है वेलखदा खा बे से दे में भग जा है और कौन चित्रा है ये आप लोग जानो अपने प्यार के धोखा दे दे कभी कभी लोग भाग जाते हैं तो हम चलते हैं कपड़ा धोने के वॉश मशीन में।

जांच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो। और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर, और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

में जल दे रहे, क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है, और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते है।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार मैं मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए मूवी का नाम है दोस्तों।

तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा ना हो। पदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमा श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माइती मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माइती मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेफ तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर।

गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता। सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथी बुकेर ए नाइटिगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

हिंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कतिन एन फेफ तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

दोनों प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर।

से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं एफएम हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आई ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 1959 की पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फाइव तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

Title song film aar paar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ki awaaz mein suni. Star cast isme hai Shama, Gurudutt, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

0: 1946 की ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें, जो अच्छे अच्छे यादें उसे ताज़ा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा, रौनक हो जाता है, चेहरे पे आ जाते हैं।
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0733 625 2047।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

गणपत गणपति बाबा से शुरुआत सब कार्य होता है और उन्हीं के जरिए से हम सब भी खुश रहते हैं, मंगलमय गीत गाते हैं। दुख में भी सुख का अनुभव किया है, जब जब मैंने आपका स्मरण किया है। चल रहा हूँ धूप में तो विनायक तेरा छाया है, शरण में शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। रूप बड़ा निराला गणपति मेरा बड़ा प्यारा, जब भी आए कोई मुसीबत मेरा बप्पा ने पल में हल कर

जिंदगी एक रास्ता है, एक रास्ता है जिंदगी। किशोरदा जी की आवाज में साथ दे रही थी लता जी फिल्म काला पत्थर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए। और यहाँ से चला दिया गया है यानी कि फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से जिंदगी का सबसे बड़ा राज। जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है के ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो इसे, इसलिए हर पल जी लो इसे। कल का भरोसा कभी नहीं, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है मेरे दोस्तों, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही तो है, यहाँ सब कुछ बदलता जाता है। जिंदगी मेरे प्यारे सुनने वालों, जिंदगी एक गिफ्ट है यार। हाँ, इसे व्यस्त ना कर बार बार, जो जी गया इसे प्यार से वही है असली सुपरस्टार। आप वही है ना, द सुपरस्टार।

जान मन कहलाएगा किशोर दा के भरपूर आवास। रोते हुए आते हैं सब और हंसते हुए कितने चले गए। मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत आपके लिए पेश किया गया है। जिंदगी में सब कुछ मिलता है यारो, जिंदगी में सब कुछ मिलता है, हर ख्वाब पूरा होता है। जो मिल गया उसे कदर करो, जो मिल गया है उसे कदर करो, हर चीज नसीब से मिलती है। और ये जिंदगी जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। हाँ हाँ, छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जी लो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आते हैं, वक्त तो चले जाते हैं, क्या समझे मेरे दोस्त।

फिल्म का नाम धर्म करम, एक दिन बिक जाएगा माट के मोल। ये हैप्पी फैर्सी आपको सुना दी है मुकेश जी के आवास में। हाँ हाँ, ला ला ला ला ला ला, बता दे ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है मेरे दोस्त, ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उनको भी है, शिकायतें तो उनको भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है। हाँ हाँ, प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है। जिंदगी में गम का होना भी जिंदगी है। हाँ, आपने ठीक सुना दोस्त कि जिंदगी में गम होना भी जिंदगी है। ये तो रहते हैं, यूँ तो रहते हैं हमारे होंठों पर मुस्कुराहट। हाँ, यूँ तो रहते हैं हमारे होंठों पर मुस्कुराहट, पर चुपके से किसी के लिए रोना भी जिंदगी है। प्यार में किसी को खोना भी जिंदगी है।

टाइटल सॉन्ग निकाल दिया गया है, फिल्म का नाम भी कहानी किस्मत की। नेकंती इंद्रियों से फंतक में ये पिक्चराइज किया गया है। मुकेश जी के आवाज में हमने श्रवण की है। खामोशी मेरी आदत बन गई है, हाँ हाँ खामोशी मेरी आदत बन गई है, तन्हाई मेरी चाहत बन गई है, लोगों से अब उम्मीद ही नहीं रही, लोगों से अब उम्मीद ही नहीं रही, खुद से ही मेरी बात बन गई है। ये भी सुन लो ये भी एक बहुत सुंदर सा शेर शायरी है। ना कोई अपने पास है ना कोई खास एहसास है, भीड़ में भी तन्हा हूँ बस खुद पे ही विश्वास, बस खुद पे

बहुत बड़ा पहेली है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, पर जो समझ गया उसके लिए आसान हो गया है। आज फिर दिल उदास हो गया है, आज फिर दिल उदास हो गया है, तन्हाई का एहसास हो गया है, ना कोई साथ है ना सहारा, बस खुद से ही प्यार हो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती ए ने सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारीख गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 40 थीव्स में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकिती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मारी के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओ पी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.pinfaunafm.pe इंटरनल पर। आप चून है जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।
1: Thank you.

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में। निकतिन निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम पिंटनल पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहां भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ आप सबको भी बहुत बहुत

लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगत एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। स्वागत करते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए है ओपन एयर के सांस पर निगतिन त्वेयन शस्त्र का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा, ऐ घटा काली घटा, बस एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निकलते ए नसीब तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं, वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है नहीं पता।

तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है, ये शानदार गीत हमने निकाला फिल्म राजा जानी में से नेक दिन तुम से, फिर तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, कुछ ना कहो, साधना सरगम और अभी शिव जी नहीं, साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान, शंकर एहसान लोई के साज पर ये टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। वो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं, इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है
2: इतना? अच्छा
1: मुझे

0: हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाएं लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या आदिश है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाएं ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: मेरे
0: ते पे सत्ता
1: ए,

मैं आग दिल में लगा दूंगा एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्य में सत्य पे सत्ता में से निकालकर आरती बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेगंतिन अख्तन सस्तक 1968 का ये गीत है। शंकर जयकिशन के साज पर